चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोकौ राम नाम प्रगास

हमारा। नमस्कार तिसहि को हमारी सकल प्रजाजनी आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पिशांत, चीटी ते कुंचर सथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब अकर्ख करत हो कम हूं, तुम मैं मिलत दे तर सब, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम

संसार एकै रूप अनूप स्वरूप रंग भयो राव कहीं पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पोज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव वाद जुगाद स्वरूप सुयंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखी उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठपति उत पाता सकल मलेश करूरण काता जे अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तु है मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे

रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि ने हरि होता के ताप, तनक महे हरि हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाश्वै सकै न कोई। एक बार जंतु में संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम ते हारो कहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा। खड़ग के मैं शरण ते हारी, आप हाथ दले उबारी। सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहु बचा। सुबैया

मुख निंदक कै शाई वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सम्मान सत्कार जो गुरु प्यारी साध संगत जी वड्डे भागां वाले गुरु चरणां विच बैठ करके सतगुरु जी दियां बख्शिशां प्राप्त कर रहे हो। आओ शाम दे समें सतगुरां दी पावन बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करदे हां। जो बच्चे गुरद्वारा साहिब सुख सागर विखे कीर्तन दी सिख्या प्राप्त कर रहे हैं उन्हां बच्चियां वलों आओ प्यार सहित आरती दा कीर्तन उपरंत पावन बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करदे हां। उस तो उपरंत कथा विचारां होणगियां अते विशेष तौर ते पंथ दे प्रसिद्ध कीर्तनीए भाई साहिब भाई निरंजन सिंह जी जवद्दी कलां वाले जो पिछले दिनां तों शाम दी हाजरी भर रहे हन वो आप संगतां नूं ठीक 7:15 बजे तों पावन बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण कराउणगे। अज दा ते कल दा दिन भाई साहिब जी दे कीर्तन हाजरी दा जो गुरद्वारा साहिब विखे बणिया होया प्रोग्राम अज दा दिन ते कल दा दिन है। आप संगतां नूं बेनती है कि वध तों वध संगतां गुरु चरणां विच पहुँच करके साध संगत जी कीर्तन दा आनंद प्राप्त करो अते सतगुरु जी दीआं असीसां प्राप्त करो जी। आओ प्यार सहित बच्चों पासों कीर्तन सरवण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

सो कहां स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट परादी तरियारे। गुरु नानक जन सुनिया पेखिया, फिर गुरु वासन परियारे।

आ गई सर, कोई नहीं कोई कोई नहीं कोई नहीं भाई, तो कोई नहीं आ जाते नाले बाबा जी आ जाएंगे जाने। वाहेगुरु वाहेगुरु।

दूजा श्री राग त्रिलोचन का। माया मोह मन आगलड़ा प्राणी, जरा मन भौ विसर गया। कुटंब देख बिकसे कमला जो, पर कर जोहे कपटन रा। दूड़ा आयो है जमे तना तिन, आगलड़ी में रह न जाए। कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीठला ले बाहड़ी वलाए। मिल मेरे रमैया में ले छाए रहाओ। अनेक अनेक भोग राज विसरे प्राणी, संसार सागर पै अमर पिया। माया मूठा चेत सनाही, जन्म गवायो आलसिया। बिखम कोर पंथ चालना प्राणी, रव सस्तैना प्रवेश। माया मोहता बिसर गया जा तजलिए संसार। आज मेरे मन प्रगट पिया है, पेख लिए धर्म राओ। तह कर दल करन महाबली, तन आगलड़ी में रह न जाए। जे को मुँह उपदेश करत है, ता वंत रतड़ा नारायणा। ऐ जी तू आपे सब कुछ जानदा, बदत लोचना रामैया। श्री राग भगत कबीर जियो का। अचरज एक सुनो रे पंडिया, अब किश कह न जाई। सुर नर गण गंधर्व जन मोहे, त्रे भवन मेख लीलाई। राजा राम अनहद किंगरी बाजे, जाके दृष्ट नाद लिव लागे रहाओ। पाठी गण सिंघिया चुंगिया, कनक कलसिक पाया। तिसमें धार चोयत निर्मल रसमय रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया। तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटया प्रखोतम, कहो कबीर रंग राता। और दुनी सब परम पुलाणी, मन राम रसायन माता। श्री राग बाणी भगत बेणी, जियो की पहरिया के कर गावना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रे नर गर्भ कुंडल जब आश तोरद ध्यान लिव लागा। मृतक पिंड पद मदन एहनस, एक अज्ञान सो नागा। ते दिन संभल कष्ट महा दुख, अवचित अधिक बसारिया। गर्भ छोड़ मित्र मंडल आया, तो नर हर मनो बिसारिया। फिर पछतावेगा मुड़िया, तू कवन कुमत पर लागा। चेत राम ने जम पर जाहेगा, जन बिचरे अनुराधा रहाओ। बाल विनोद चंद्र रस लागा, खिन खिन मुहे व्यापे। रसमी समीद अमृत बिख चाकी, तो पंच प्रगट संतापे। जाप तब संजम छोड़ सुकृत, मत राम नाम ना आराध्या। उछलिया काम काल मत लागी, तो आन सकत गल बांध्या। तरुण तेज पर त्रैमुख जोहे, सारे सरना पछाणिया। उन्मत काम महा बिख पूले, पाप पुन ना पछाणिया। सुत संपत देख मन गर्भ्या, राम हृदय ते खोया। अवर मत माया मन तोले, तो भोग तो भागमुख जन्म बेगोया। पुंडर केस कुसुम ते तौले, सप्त पताल की बाणी। लोचन समरह बुद्ध बल नाठी, ता काम पाव समाधानी। ताते बिखे पई मत पाव सकाया, कमल कुमलाना। अवगित बाण छोड़ मित्र मंडल, तो पाशे पछताना। निकुटी देह देख तने उपजे, मान कर तने बूझे। लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कशु ना सूझे। थाका तेज उड्या मन पंखी, करे अंगना सुखाही। बेणी कहे सुनो रे भगतो, मरण मुक्त किन पाई। श्री राग तोही मोही, मोही तोही अंतर कैसा। कनक कटल जल तरंग जैसा, जोपे हमना पाप करंता। अहे अनंता पतित पावन, नाम कैसे हुंता रहाओ। तुम जो नायक आशो अंतर जामी, प्रभते जान जानी जे जानते स्वामी। शरीर अराध्य मोको विचार देहु, रविदास समदल समझावे को। रागमा चौप दे कर पहला महला, चौथा एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निरपो निर्वैर, काल मूर्ति युनि सह पंगुर प्रसाद। हर हर नाम है हर मन पाया, वडपागी हर नाम त्याया। गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई, कोई विरला गुरमत चल लै जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पलै, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चलै। गुरपूरे हर नाम दड़ाया, हर नैचल हर तन पलै जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आण मिलावे मेरे प्राण जीवाया। हो रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चलै जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सिखाई, हो रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जा नानक हर तन पलै जियो। माज महला चौथा, मधसूदन मेरे मन तन प्राणा। हो हर बिन दूजा अवर न जाना, कोई सज्जन संत मिले वडभागी। मैं हर पर प्यारा दसै जियो, हो मन तन खोजी पाल पलाई। क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई, मिल सतसंगत खोज दसाई। विच संगत हर पर वसै जियो, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। हम बारक दीन करो प्रतपाला, मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा। गुर जल मिल कमल विगासै जियो, मैं बिन गुर देखै नींद ना आवै। मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावै, हर हर दया करो गुर मेलो। जन नानक गुर मिल रहस्य जियो, माज महला चौथा। हर गुण पढ़िए हर गुण।

सब तेरा खेले अखाड़ा जियो जी जंत सब तू दे पाए जे जित पाना ते तित लाए सब कुछ कीता

गुण निंदान अमृत हर नामा, हर त्याए त्याए सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मटावे। आस मनोरथ पूरन होवे, पेट त गुरदर साया जियो। आगम अगोचर किश मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावे।

कथा सोंत मल सगली खोबे पेटच सांग सा संतन के सदा जपों दी अल्लाह जियो प्रभ अपना सास सास समारो ए मत गुर प्रसाद मन तारो तुमरी कृपा ते होई परगासा सर्व मया प्रीत पाला जियो सत सत

गावत सुनते सभी मुकते सोते आइए जिन हम किए जियो जन्म जन्म के किल विख जावे मन चिंदे से फल पावे सिमर साहिब सो सच स्वामी रिजक सब सो को दिए जियो नाम जपत सर्ब सुख पाइए सपो बिन से हर हर त्याइए।

सिमर सिमर सिमर गुण गामा काटिए जम की फसा जियो अमृत वरखे अनहद वाणी मानता ने अंतर साथ समाणी तृप्ति अगाए रहे जन तेरे सतगुर किया दलासा जियो जिसका साथ इस ते

प्रभ नानक सर्व समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जित सच त्याइए सो रिदा सहेला जित हर गुण गाइए सात अर्थ स्वभावी जित बसे।

आप अकंती आप पसारा, लेपने जग जीवन दाते, दासन डिठे लैन बजोगा जियो, अंचल लाए सब शिष्ट तराई, अपना नाम आप जपाई, गुर बहुत पाया किरपाते, नानक

पार बराम जो सद ही सेवे सो गुर मिल नहीं चल कहना प्रेम भगत जिसके मन लागी गुण गावे अन अन

आपे वक्स मिलावणिया, मेरा ठाकर सच दड़ाए, गुर प्रसादी सच चित लाए, सचो सच बरते सवणी थाई, सच्चे सच समावणिया, बेपरवाओ सच मेरा प्यारा, किल बिखी अवगुण

गुर के सावद तिखा नवारी सहजे सुख समावणिया रतन पदारथ पलड़ त्यागे मनमुख अंदा दूजे पाए लागे जो बीजे सोई फल पाए सुपने सुख न पावणिया अपनी कृपा करे सोई जन पाए गुर का शब्द मन बसाए आंदिन सदा रहे पै अंदर पै मार परम चुकावणिया परम चुकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल वाणी हर गुण सहजे का बणिया सिमरत शास्त्र वेद बखाने परमे पुला तत न जाने बिन सतगुर सेवे सुख न पाए दुखों दुख कमा बणिया आप करे किसे आखे कोई आखण जाइए जे पुला होई नानक आप करे कराए नामे नाम समावणिया माज महला तीजा आपे रंगे सहज सवाए गुर के शब्द हर रंग चढ़ाए मन तन रत्ता रसना रंग चलूली पै पाए रंग चढ़ावणिया हो वारी जियो बारी निरपौ मन बसावणिया गुर कृपा ते हा निरपौ ते आया पिख पौजल शब्द तरा।

बेला भक्त सब सुहाया, जित सच्चा मेरे मन पाया, सच्चे सेविए सच बड़ियाई, गुर कृपा ते सच पावणिया, पाओ भोजन सतगुरु तुठे पाए, अन रस चुके हर रस मन बसाए, सच संतोख सह सुख बाणी।

बिस्टाके कीड़े बिस्टा कमावे फिर बिस्टा माहे पचा बनिया मुकते सेवे मुकता होवे होमे ममता सब देखोवे अन दिन हर जियो सच्चा से।

जे पाए माया मन परमावे, माया मो सब शुद्ध गवाई, कर अब गुण पुछता बनिया, सतगुर मिले ता तत पाए, हर का नाम मन बसाए, शब्द मरे मन मारे अपना, मुक्ति का दर पावनिया, खिल बिख काटे क्रोध नवारे, गुर का शब्द रख